0: is mushrooming of clandestine labs.
1: मैंने एक लैब में खुद गया हूँ बनते हुए देखा हूँ. एस्ट्रोनॉट जैसा सूट पूरा ऊपर से नीचे सूट फुल कवर.
2: Drug syndicate is very smart. When you come up with a new testing methodology, they will actually design a new one to circumvent.
3: It's that cat and mouse game.